मेहमानों को खुश कर जाए, मजेदार लज्जतदार स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़, जब जी चाहे शौक से खाए, करम को रम सेक के खाए, तल के खाए, मजेदार लज्जतदार स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़।

0: रात भर जीता हूँ, लेकिन आज भी घर के अंदर रोशनी भी दब जाए।
1: You are listening to the C Fly Middle East radio program.